गीत संगीत को बजार सुपा दौराले म्यूजिक पाले सगौरव प्रस्तुत गर्दछ गीत संग्रह आंसू पिउछु बरु यमन खनाल को म्यूजिक अरेन्ज में प्रेम ओली को उत्कृष्ट लय भूपेन्द्र बीएम को शब्द सिर्जना में अमित बाबू रोका र पूर्णकला विषय को सुमधुर स्वर में सुपा दौराले म्यूजिक पाले मार्फत सर्वत्र बजार उपलब्ध छ। उत्पादक सुपा दौराली म्यूजिक प्राली प्रबंध निर्देशक यमन खनाल 98490404।